0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है।

पाकिस्तान और दुनिया के हालात से बाखबर रहने के लिए वॉइस ऑफ नॉर्वे, हमारी वेबसाइट www.voiceofnorway.info हर इतवार को सेंट्रल यूरोप के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे, बरतानिया के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे, अमेरिका कनाडा के वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और मौसम गर्मा में रात 9 बजे आपका रेडियो स्टेशन, आपकी आवाज। सामिन, आपका क्या ख्याल है, हमारा फैमिली सिस्टम टूट रहा है? दुनिया भर में इस इशू पर तहकीक और बहस जारी है कि साइंसी तरक्की के साथ दुनिया भर में फैमिली सिस्टम टूट फूट का शिकार है। इस सवाल पर कई पहलुओं से कसीर तादाद नुकता हाय नज़र मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प पहलू जो पाकिस्तानियों और यूरोपी पाकिस्तानियों में पाया जाता है, इसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन का खास तकद्दस का दर्जा हासिल है, जबकि यूरोपियों के बारे में आम ख्याल पाया जाता है कि यहाँ कोई फैमिली नहीं है। ये एक मदर ब्रदर आज़ाद मुआशरा है जहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बगैर किसी मुआहदे के इकट्ठे रहते हैं और छोटी छोटी वजूहात पर एक दूसरे को छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। बूढ़ों की बड़ी उम्र वालों के अदारे के हवाले कर दिया जाता है और फिर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता, जबकि ये तमाम नुक्ता नज़र हमारी कम्युनिटी का एक फ़ख्री मुगालता है और इस मसले को देखने का सही जाविया नहीं है। ख़ानदान मुआशरे की बुनियाद है, जबकि वालदैन फैमिली की। यूरोप में फैमिली मुराद रिश्तेदारों का जुम्मे खफीद नहीं है। फैमिली यूनिट सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चों तक महदूद है। बच्चे बड़े होकर अपने पार्टनर के साथ एक नए ख़ानदान को तश्कील देते हैं। यूरोप और अमेरिका में निस्फ से ज़्यादा जोड़ों में शादी से पहले इकट्ठे रहने का रुझान तख़ीर से शादी या तलाक का मौजू बनता है, जबकि जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं और शादी से पहले बाप बन चुके हैं। एशिया में ऐसा नहीं है, वहाँ बराह रास्त शादी का रुझान। जुनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक में ये रुझान इन दोनों हिस्सों से मुख्तलिफ है। वहाँ आम तौर पर मर्द ये कहते हुए मिलते हैं कि उनकी औरतें शादी और बच्चों के मामले में हड़ताल पर हैं। वो पार्टनर के साथ रहे बगैर एक दो बच्चे पैदा करके अपना माहौल चलाती हैं।